क्या बात है, सेल सेल सेल लग चुकी है। सो प्रोग्राम पे जा मेरा लाइए फिर दो बोल, थोड़े करिए माहौल गर्मा गर्म। नहीं तू मेरी खंड मिश्री लग गया नहीं खड़ा लो।

सतगुरु होए दयाल तसरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल नकब हूँ झूरी है, सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल ता हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके हैं जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम, खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम, रेडियो उड़ान जिंदगी जिंदाबाद ते चढ़दी कला की पहचान, रेडियो उड़ान प्रभ संधु दे नाल।

0: 9257।
1: पिछले 18 सालों तो मॉर्गेज दिया सेवा देंदे आ रहे अकाल मॉर्गेजेस इंक नाल कम कर दे दविंदर पवार।
0: फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉर्गेज होम इक्विटी बिजनेस लोन डेट कंसोलिडेशन रीफाइनेंस रेंट टू ओनली कॉल करो दविंदर पवार 6479888731 6479888731।
1: जे नहीं होना खज्जल खुआर ता कॉल करो
0: दविंदर पवार।
1: जेकर एक बार इना तुहाडी फाइल वेख के हां कह दित्ती ता अपने वादे ते हमेशा खरे उतर दे हां। लाइसेंस नंबर 10845 इंडिपेंडेंटली ओन एंड ऑपरेटेड।
2: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
3: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया। अपने भविष्य नु सुरक्षा करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ले आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ।
4: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम। लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस विजिटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस किड्स प्लान आरआरएसपी आरईएसपी टीएफएसए। कॉल करो
5: 6478355294 6478552594। स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992 फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल। टू लोकेशंस टू सर्व यू 2575 स्टील एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन 9057900560 6 मार्कोनी कोड बोल्टन 9059519394। स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन से
3: शादी दी मूवी बनवाने लिए या रिंग्स

0: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स, कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com. Summit Realty Expert.
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ

0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। समिट रियल्टी एक्सपर्ट।
2: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
3: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
2: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
3: हां जी तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी,
3: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस

0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट समिट रियल

0: रानू 905-803-8056 905-803-8056।
1: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, कितनिया तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
2: निर्बल बाबे ने कहा से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा ता हो ही नहीं।
3: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
5: रेडियो आवाज,
6: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

गाइड मूवी है, बिल्कुल प्रवीण जी बिल्कुल सही दस के गए, गाइड मूवी है ते इन्नी वधिया मूवी सी। और ये जिहड़ा गाना है ना ये तो कमाल ही है, ये गाना इन्ना वधिया है। और यदि चाहे आप ट्यून ला लियो ला लिए, गाना जिहड़े उहदे बोल है, एक एक जिन्हां ने लिखिया ये ते जिन्हां ने गाया, फिर उन्होंने तो गजब ही ढा दिता लता मंगेशकर जी ने। सो ये जिहड़ा मैं थोनू सुनाया ये न्यू वर्जन हैगा, वैसे जिहड़ा असली गाना है वह हैगा लता मंगेशकर जी की आवाज़ दे विच। सो फिर वो ट्यून का भी जिहड़ा फर्क हुंदा है ना, सो वह भी मैं थोनू सुनाऊंगी आज फिर जीने की तमन्ना। और ये फिल्म दी जिहड़ी स्टोरी सी ना ये मैनू याद है, असीं देखी सी टीवी च जदों इलेक्शन होंदे होंदे सी ना उत्थे, फिर वो जिवें जदों उन्होंने रिजल्ट दसने होंदे सी वो मूवी दिखाउंदे होंदे सीगे। सो उदों मैनू याद है असीं टीवी दे विच मूवी देखी सीगी ये, ते फिर वो बड़ी डिफरेंट जी स्टोरी है, मतलब जिवें रोमांटिक है बिल्कुल, पर किधर तों किधर नूं चली जांदी है जिहड़ी इहदी स्टोरी है। जिवें एंड दे विच जिहड़ा अपना देवानंद हुंदा है ना, वो जिवें साधु ही बन जांदा, वो साधु भी किवें बणदा, मतलब कि जिवें कहिंदे ना धक्के नाल ही बना दित्ता जांदा, मीह वगैरह नहीं पैंदा हैगा उत्थे किसे जिथे वो एक जगह पहुंच जाता। सो बड़ी डिफरेंट जी स्टोरी कितों शुरू होंगी है ते कितने जाके खत्म होंगी है। सो असल दे विच जिवें आपां कहिंदे ना गाइड मूवी है, सो गाइड ही वो असल च बन जाता है कि उन्होंने जिवें एवं कह देंगे भी हाँ वो जिवें ना पुछया जी देन लग जाते या दसन लग जाते, तो वह कहें जी हूँ इन्होंने जब तक मीह नहीं ना पैना कुछ नहीं खाना पीना, ते वो फिर पहला तो उन्होंने लगता भी नहीं नहीं खा लेंदे हैं कुछ नहीं होंगे, पर फिर उन्होंने होंगे लोग मेरे ते इन्ना विश्वास कर रहे हैं मैं क्यों इदा करा है ना, अकाल जहा पै जाता जिमें मीह ना पैण करके। सो फिर उस तो बाद वाकई फिर कहें मीह पै जाता, ते बड़ी वधिया स्टोरी है बहुत कमाल द। सो असली गीत भी सुनाइए थोड़ा थोड़ा जहा।

0: One-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: यारों के साथ जश्न या फैमिली के साथ करना हो जश्न, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
3: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाम, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नायग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नायग्रा फॉल्स, कॉल 9053580864
2: 9053580864 Dhaba on the Falls.

0: चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: फोर एंड अवनीजर द इंटरसेक्शन ते मुर्दबारे बाय प्लाजा दे विच सिल्वर हट।
0: 6473393521
1: 6473395121 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
0: सिल्वर हट।
2: मैं जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले लई।
3: लड़िया हो या चार, बिजनेस ले जाना होवे या फिर घूमन ले, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो। एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओ भी रीजनेबल प्राइसेस थे। स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने। कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा। कॉल 9056781200।
4: आखरी अपील साड़ी रद्द हो गई।
5: ओ भरावा साड़ी भी अपील रद्द हो गई है।
6: मैं ता तुहानू पहले ही कहा सी, मम्मी डैडी दा इमिग्रेशन दा केस स्मार्ट इंटरनेशनल इमिग्रेशन वालिया तो करवाओ।
7: सुपर वीजा फॉर पेरेंट्स, विजिटर वीजा।
8: गल हवे रियल एस्टेट सेल परचेज ऑफ बिजनेसेस, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, विल, पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर एफिडेविट दी, ता सोचन दी लोड़ नहीं। इको नाम याद रखो, लॉ ऑफ अमन शर्मा, जो अपने क्लाइंट्स नु देंदे ने एक्सीलेंट लीगल सर्विसेज। अमन शर्मा LLB बैरिस्टर सॉलिसिटर एंड नोटरी पब्लिक, 25 चेरीक्रेस्ट ड्राइव यूनिट 6 ब्रैम्पटन। कॉल 9059132355।

0: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮਨੀ ਸੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਕੁਝ ਬਣਾਓ।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: 5
3: महान तीन दिन का कीर्तन दरबार मई 16-17 दिन शनिवार एतवार दोपहरे 3 बजे लैके रात 10 बजे तक मई 18 दिन सोमवार 12 बजे तो लैके शाम 7 बजे तक
4: ब्रैम्पटन फेयर ग्राउंड 12942 हार्डलेक रोड कैल्टन विखे करवाया जा रहा है। पंथ दे सरमौर रागी जथे पदम श्री भाई साहब हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले संत अनूप सिंह जी ऊना साहेब वाले भाई अनंत वीर सिंह जी एल ए वाले भाई साहब जगजीत सिंह जी बबीहा दिल्ली वाले प्रोफेसर परमजीत सिंह जी पटियाले वाले भाई मनिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल पंजाबी विरसा रेडियो दे सिंह अजीत नूं कीती जा सकदी है 6474481000 6474481000। सेवा भेजन वास्ते seva2022@yahoo.com ते अपनी सेवा भेज सकदे हो।
5: सिंपली इंडियन ब्रिंग्स यू ऑल सिंपली डिलीशियस डील्स, बाय वन गेट वन फ्री एवरी डे, सवेरे 10 तो शाम 7 बजे तक ऑन डाइनिंग एंड टेक आउट। मजा लवो संडे नो पराठा प्लेट, मंडे मनपसंद कुलचा प्लेट, ट्यूसडे चना भटूरा, वेंसडे लाजवाब वेज थाली, थर्सडे यमी हाका थाली, फ्राइडे मजा लवो साग मक्की दी रोटी दा। ए यमी डील्स सिंपली इंडियन दी सारिया ही लोकेशंस ते। डाइनिंग टेक आउट एंड केटरिंग आल्सो अवेलेबल। कॉल एट 9057948111। सिंपली डिलीशियस मतलब सिंपली इंडियन।
6: कनाडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
7: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
8: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
6: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।

0: jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे
4: S&S Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानने ले या सलाह लेने ले आज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000

0: मिनट 2899829 9597 9597 2899829 9597
1: हाँ जी नाले अपनी बोली बोलते डॉक्टर ने
0: थैंक यू पाजी थैंक यू
1: इन्हां नूं तुसीं कह दिओ कि पंजाबी लहरा रेडियो तो नंबर नवी तो मिलिया ते वधिया थोड़ी सेवा करनगे पूरी
0: तुहाडे डैडी दा डैडी दा पूरा दसूंगा डैडी नूं कहो कुलवंत चाहल दा गलत फोन आया
1: फिर तां बण गई गल फिर डैडी नूं भी मैं कह दूंगा ते डैडी भी थोनूं कहणगे कि इन्हां तों ही करायो सर्जरी चिट्टा मोती आई कहिंदे उन्होंने मैनु दसिया यार तुसी किसी ने दसिया नहीं इन्नी एड सुन ली करैक्ट कर दिया करो या करैक्ट नहीं चलो इनफॉरमेशन दे दिया करो नवी ए भी कहिंदे आ सो कैटरैक्ट आई सर्जरी थोड़ी निगाह परफेक्ट कर देंगे 2020 ठीक है इन्हों कॉल करो 2899829597 2899829597 कॉल कर लो मिस्टर सिंह पीजा मिस्टर सिंह पीजे दी 30 लोकेशन ने कैनेडा वाइड कल ब्रैम्पटन च 10-15 लोकेशन ने 100% प्योर वेजिटेरियन पीजा मिस्टर सिंह पीजा ते डील थानू दिने बहुत ही टॉप दी दो लार्ज पीजे चार चार टॉपिंग चार डिप 2 लीटर कोक दी बोतल फ्री सिर्फ $40 च सारा समान वाह 905-500-4000 नंबर है 905-500-4000 9055004000 मिस्टर सिंह पीजा नू तुसी जरूर जरूर जरूर संपर्क करो ते वधिया यार हल्का जिहा चिली जिहा मौसम है गर्मा गर्म पीजा खाधा जाए मैं कहना वो वर्गी रही सी कोई नहीं ते एक असीं तुहानूं जानकारी दिंदे ने भी शैलजा ओजा शैलजा नंबर 1 अकाउंटेंट ने शैलजा नाले CPA ने तुसी शैलजा दे नाल जरूर संपर्क करो जदों ना टैक्स रिफंड घट जांदा बंदे नूं टेंशन बहुत पैंदी है पर हुण नहीं हुण शैलजा ओजा CPA दे नाल थोड़े हक के पैसे थोड़ा वापस मिलने परसनल टैक्स हो बिजनेस फाइलिंग हो बिजनेस इनकोरपोरेट करवाना HST GST फाइलिंग CRA दे नोटिस ने हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन शैलजा ओजा ट्रक ड्राइवरों ऊबर ड्राइवरों डॉक्टरों डेंटिस्टों रियल्टरों अज ही कॉल करो तुसी भी अपनी मेहनत की कमाई को बचाओ तो अपने टैक्सिस फाइल करो बहुत ही अच्छे तरीके मैक्सिमम रिफंड तो नंबर है शैलजा का 416-409-3252 स्टूडियो का 9056733337 गलबात थोड़ी साड़ी होगी आ जाओ फिर करिए कुछ गल्लां बातां यार एंड थोड़े मन पसंद दे कुछ के थोनों गाने गुने भी सुनाने थोड़े तुसी भी कायम हो जाओ असी तां फिर जदों प्रोग्राम करन लई पहुँच गए असी तां कायम हो गए तो थोड़े लई कायम ही रहीदा मैं हसदा हुंदा हमेशा कि भावें जो मर्जी चल रहा होवे बट जदों फिर माइक दे सामने आ रही है ना तो फिर डजंट मैटर थोनों असी इदा नहीं कदम महसूस करवाते भी नवी नुआ हो गया ऑलवेज प्रोग्राम फुल एनर्जी के नाल पेश किया जाएगा नो मैटर वट सो प्रोग्राम पंजाबी रहा 905-673-3337 9056733337 गलबात थोड़ी साड़ी हो रही है साढ़े नाल जुड़ चुके ने सुख जी ग्रैंड होम फर्नीचर तो इस फ्राइडे असी लाइव ऑन लोकेशन प्रोग्राम पेश कर रहे हैं ग्रैंड होम फर्नीचर 6885 टॉमकिन रोड डेरी एंड टॉमकिन ते फ्राइडे सैटरडे संडे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन लगातार विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड की सेल चलेगी तो सुख जी साढ़े नाल सुख जी सो लॉन्ग वीकेंड की सेल एंड एक दिन बाकी है तो फिर सेल की शुरुआत है सो दसो फिर की स्पैशल आप ला रहे हैं
2: बहुत शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद नवी भाई जी बिल्कुल विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड जी सेल लगन जा रही है ग्रैंड होम फर्नीचर के उपर एड्रैस परिवार जरूर नोट कर लैन 6885 टॉमकन रोड के उपर जी विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड सेल लगन जा रही है तो फ्राइडे वाले दिन पंजाबी लहर का लाइव ऑन लोकेशन प्रोग्राम चलूगा तो डिस्काउंट के तोहफे जे परिवारों मिलने ही मिलने हैं चाहे तुम बैड सैट लेना सोफा सैट लेना डायनिंग टेबल लेना स्पैशल डिस्काउंट जे विक्टोरिया डे तोहफे जे लाजमी दिते जाने मैं जाता एक डील दे दिना जिन्हों परिवारों ने

0: अब भी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 फेंटर वे 85 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट 275 गार्डन ब्रूक ट्रेल इन ब्रैम्पटन।
1: क्या बात है, सिंपली इंडिया से जरूर तुसी गेड़ा मार के आओ। बहुत वधिया क्वालिटी फूड ते नाल डील दी डील तो सुन रही, बाय वन गेट वन फ्री, क्या बात है, सिंपल इंडियन स्वीट। सो गलबात थोड़ी साड़ी हो रही है, अगेन मैं नंबर दे दवा स्टूडियो का जरूर, जी सद के कॉल करो ते तुसी अपना अपना ओपीनियन साडे नाल शेयर कर रहे हो। नंबर है अपना 9056733337905673333, फोन नंबर है 9056733337। एक थोनों अक्सर ही इनफॉर्मेशन देने होने फाइव रिवर्स डक क्लीनिंग दी, क्योंकि हुण नैक्सट वीक मौसम बड़ा गर्मा गर्म है, सो हो जाओ रेडी ते तुसी डक क्लीनिंग करा लो एसी चलाउण तो पहला पहला। इन्हां कोल वीकेंड ते कुछ कुछ स्लॉट्स अवेलेबल ने, मुंडे यंग ने, मेहनती ने, बहुत कहिंदे ना कि लगन नाल काम करदे आ, सो तुसी वी इन्हां नूं मौका दो। मैं भी खुद इन्हां तो डक